0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह

एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और

0: राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न ₹200 वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
4: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे

0: में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टीटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्ध जनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोक सत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स थर्ड हाई लेवल मीटिंग विद सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा किया। श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अवसंरचना तथा संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों तथा विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित

0: आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राची निर्मिती असलेला वनिता मंडळ हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून. श्रोतेहो, दुपारचा एक वाजता आहेत आता. ठीक, एक वाजता हिंदी समाचार दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होईल. आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत काही क्षणातच.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है. बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं. बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन. सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है. योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया. सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपए का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है. पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है. इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है. प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है. इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है. हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है. इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा. सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष के वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी. भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा. इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया. उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था. 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था. इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था. तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में है. ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं. अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है. अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है. सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है. खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था. लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे. मुंबई के कुर्ला पूर्व

0: इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,538 जबकि निफ्टी 24,231 पर था। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अम्स्टरडैम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्स OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 1:05 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीत बहार। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया आली लहर केला कहर या चित्रपटातील गीत।

0: श्रोतेहो नमस्कार. परिसर या कार्यक्रमाच्या राज्यस्तरीय प्रसारणामध्ये आपलं मनःपूर्वक स्वागत. श्रोतेहो परिसर या कार्यक्रमाच्या आजच्या भागात आपण ऐकणार आहोत पावसाळा आणि पर्यावरण याविषयी पत्रकार अश्फाक अत्तार यांनी सांगितलेली माहिती.
1: नमस्कार श्रोतेहो, मी पत्रकार अश्फाक अत्तार. आज आपण पावसाळा आणि पर्यावरण यांचं अतूट नातं याविषयी जाणून घेणार आहोत. पावसाळा हा केवळ ऋतू नसून निसर्गाला नवसंजीवनी देणारा काळ आहे. उन्हाळ्याच्या कडक तापमानानंतर पावसाचे पहिले थेंब जमिनीवर पडतात आणि संपूर्ण सृष्टी नव्या उत्साहाने बहरून येते. कोरडी पडलेली जमीन हिरवाईने नटते, ओढे नाले वाहू लागतात आणि निसर्गाचे रूपच पालटून जाते. पाऊस हा पर्यावरणाचा जीवनदायी घटक आहे. पावसामुळे नद्या, तलाव, विहिरी आणि धरणांमध्ये पाणी साठा वाढतो, भूजल पातळी उंचावते आणि शेतीला आवश्यक असलेले पाणी उपलब्ध होते. त्यामुळे अन्नधान्य उत्पादन वाढून मानवी जीवन समृद्ध होते. पावसाळ्यात झाडे, वेली आणि वनस्पतींना नवसंजीवनी मिळते. जंगलातील जैवविविधता पुन्हा फुलून येते. अनेक पक्षी, प्राणी, कीटक आणि जलचरांसाठी हा प्रजननाचा महत्त्वाचा काळ असतो. रान फुले फुलतात, फुलपाखरे बागडू लागतात आणि निसर्ग रंगांची उधळण करतो. याच काळात डोंगर दऱ्यांमधून वाहणारे धबधबे, धुक्याने झाकलेले पर्वत आणि हिरव्या शालूने नटलेली शेती आपल्याला निसर्गाच्या सौंदर्याची जाणीव करून देतात. पावसाळा हा निसर्ग निरीक्षणासाठी आणि पर्यावरणाविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा काळ मानला जातो. मात्र पावसाळ्याचा आनंद घेताना पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. प्लास्टिकचा कचरा नाल्यांमध्ये आणि ओढ्यांमध्ये टाकल्याने पाण्याचा प्रवाह अडतो आणि पूरपरिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे प्लास्टिकचा वापर कमी करणं आणि कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणं आवश्यक आहे. वृक्षारोपणासाठीही पावसाळा हा सर्वोत्तम काळ मानला जातो. या काळात लावलेली रोपे सहज रुजतात आणि त्यांची वाढ चांगली होते. प्रत्येकाने किमान एक तरी झाड लावून त्याचं संगोपन केल्यास पर्यावरण संवर्धनासाठी मोठं योगदान देता येईल. पावसाचे पाणी अडवा आणि जिरवा हा संदेशही तितकाच महत्त्वाचा आहे. घरांमध्ये, शाळांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी पावसाचं पाणी साठवण्याच्या योजना राबवल्यास भविष्यातील पाणी टंचाईवर मोठ्या प्रमाणात मात करता येऊ शकते. आज हवामान बदलाचे परिणाम जगभर जाणवत आहेत. अनियमित पाऊस, वाढतं तापमान आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे पर्यावरण संवर्धनाचं महत्त्व अधिक वाढलं आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने निसर्गाशी मैत्री करून पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारणं आवश्यक आहे. श्रोतेहो, पावसाळा आपल्याला निसर्गाशी जोडण्याची संधी देतो. हिरवीगार शेते, धुक्याने भरलेले डोंगर, खळखळणारे झरे आणि पक्ष्यांचा किलबिलाट हे सर्व आपल्याला पर्यावरणाचे महत्त्व पटवून देतात. म्हणूनच पावसाचा आनंद घेताना निसर्गाचे जतन करण्याचा संकल्प आपण सर्वजण मिळून करूया. चला तर मग या पावसाळ्यात पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश प्रत्येकापर्यंत पोहोचवूया आणि हिरवेगार, स्वच्छ आणि समृद्ध भविष्य घडवूया. धन्यवाद.
0: परिसर या कार्यक्रमात आताच आपण पावसाळा आणि पर्यावरण याविषयी पत्रकार अश्फाक अत्तार यांनी सांगितलेली माहिती ऐकली. या कार्यक्रमासाठी सूत्रनिवेदन आणि निर्मिती सहाय्य ऐश्वर्या पटवर्धन, सादरकर्त्या तेजा दुर्वे. ही आकाशवाणी सांगली केंद्राची निर्मिती होती.
2: श्रोतेहो, 2:15 वाजत आहेत. आता दोपहर समाचार दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
4: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
3: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
5: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले

0: विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
1: Over the past decade, BRICS has emerged.
2: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
1: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
3: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
4: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
6: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
7: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स ICT बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

है चांग गोपी उधड़ती भसी न रंग कृष्ण चले थी राधे चांग गोपी उधड़ती भसी न रंग कुठे खेला भाली दंग अमला संशील।

हिल पर हिला तुझे कप्पा लीला टीला आगो हिल हिल पर हिला तुझे कप्पा लीला टीला तुझे कप्पा लीला टीला तुझे कप्पा लीला टीला गो फैशन मराठी सो

0: आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026

0: 2027 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today interacted with chief executive officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve lives of people. Mr. Modi noted that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment, and suggested creating an ecosystem and an environment where, when the world thinks of space, it looks towards India. Emphasizing greater collaboration between space industry and other social development sectors, the Prime Minister encouraged greater collaboration with Atal Tinkering Labs to nurture curiosity and interest among young minds for space. Government today reiterated that the welfare and security of Indian seafarers community is of high priority for India. Briefing the media in New Delhi, spokesperson of the Minister of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that India continues to closely follow developments in West Asia. Talking about an incident involving 2 foreign-flagged vessels, Mr. Jaiswal said all 22 seafarers are safe and the government is in touch with the relevant officials regarding this matter to ensure their safety and well-being. On the visit of MEA Secretary Sri Priya Ranganathan to Palestine, the MEA spokesperson said that the secretary handed over consignment of life-saving medicines to the Palestinian government for the people of Palestine for their health needs. Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwani Vaishnav today launched the Mobile Phone Manufacturing Scheme MPMS. Union Cabinet had approved the scheme last month with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The scheme tenure will be of 5 years from 2026-27 to 2030-31. The MPMS has 2 target segments, including incentivizing mobile phone manufacturing and supporting Indian mobile phone brands. The government has said that a total of 29 foreign direct investments, FDI, have been reported under the revised framework till yesterday, involving proposed FDI of more than 4,800 crore rupees. These investments span a range of sectors, including infotech, AI, information and communication, manufacturing and pharmaceuticals, among others. The Minister of Commerce and Industry said that the 29 investments have been reported by investors based in Mauritius, US, South Korea, Japan, Singapore, Luxembourg, and the Cayman.

0: देशयोः सशस्त्रसेनायाः च मध्ये दीर्घकालिकं मैत्रीं प्रतिबिम्बयतीति विदेशमन्त्रालयस्य सचिवस्य श्रीप्रिया रङ्गनाथन् इत्यस्याः फिलिस्तीनदेशयात्रायाः विषये विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवदत् यत् तस्याः यात्रायाः समये सा तत्रत्याय दृढविकासाय सहभागी भवितुं भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रकटितवतीति सः इत्यपि अवदत् यत् सचिवः फिलिस्तीनदेशस्य जनानां स्वास्थ्यस्य आवश्यकतायै जीवनरक्षक औषधान्यपि समर्पितवतीति सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव अद्य चलदूरवाणी निर्माण योजनाया MPMS इत्यस्याः उद्घाटनम् अकरोत् केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन गतमासे पञ्चशतोत्तर द्विषष्टि सहस्र कोटि रूप्यकाणां व्यय विनियोगेन सह एषा योजना अंगीकृता आसीत् केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य पश्चिम बंगालस्य सिलीगुड़ी नगरे सशस्त्र सीमा बलस्य मुख्यालये प्रायः नवसप्तत्यधिकैकशत कोटि रूप्यकाणां अनेकानां परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान् समारोहानन्तरं कार्मिकान् संबोधयन् गृहमंत्री अवदत् यत् यदा भाजप सर्वकारः केन्द्रे सत्तां प्राप्नोत् सीमा सुरक्षार्थं उत्तरदायिनां कर्मचारिणां कल्याणाय सर्वोच्च प्राथमिकता तदा दत्तास्तीति सः अधोरेखितवान् यत् SSB इति बलं नेपाल भूटान इत्यादिभि देशैः सह मुक्त सीमायाः रक्षणस्य समाह्वानपूर्णं कार्यं निर्वहतीति एतत् कठिनतमेषु कर्तव्येषु अन्यतमम् इति सः उक्तवान् अपि च सः उल्लिखत् यत् सिलीगुड़ी मार्गस्य महत्वम् अवगन्तुं केन्द्रसर्वकारेण अस्मिन् प्रदेशे निरीक्षणं प्रवर्धितम् अस्ति इति
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है मित्रों ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए
0: प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति अद्य दूरसञ्चार सूचनासञ्चार तन्त्रज्ञानक्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजील देशौ सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराणि अकुरुताम् सामाजिक प्रसारमाध्यमे दूरसञ्चार विभागः अवदत् यत् एषा सन्धिः डिजिटल नवान्वेषणस्य प्रगत्या सह डिजिटल आधारिक संरचनायाः सुदृढीकरणञ्च करिष्यतीति उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां सहकारञ्च वर्धयिष्यत्यपि पुणे नगरे आयोजितस्य द्वादश ब्रिक्स संप्रेषण मन्त्रिणां सभां निकषा केन्द्रीय संप्रेषण मन्त्रिणा ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया इत्यनेन ब्राजील देशस्य संप्रेषण मन्त्रिणा फेडरिको डी सिक्विरा फिल्हो वर्येण च सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि आयोजनस्यास्य अध्यक्षः केन्द्रीय संप्रेषण मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वस्य प्रारंभिक भाषणे भारतस्य भविष्यस्य विषये दृढं दृष्टिं निरूपयन् उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्यस्य डिजिटल इंडिया इत्यभियानं प्रति प्रतिबद्धतया मार्गदर्शितं स्थितिस्थापकं विश्वसनीयं नवान्वेषिणं सशक्तिभूतं सर्वसमावेशयुतञ्च भवतीति भारतस्य दृष्टिकोणम् अधोरेखितवान्
2: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए
3: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स
0: ईरान देशस्य विदेशमंत्री श्री अब्बास अरागची इत्येषः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिक प्रतिबंधान् निराकुर्वन् उक्तवान् यत् एतादृश्यः विफल नीतयः ईरान जनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्ति इति अधिकां विफलताम् अपि आनेष्यन्ति इति च. अरागची इत्यस्य इमां टिप्पणीं ट्रम्पेन ईरान विरुद्धं कठोर आर्थिकपदक्षेपोत्थापनरूपेण स्वीकृतम्. सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य स्वस्य 25-2000 मे मासिक निर्णये परिवर्तनं कृत्वा प्रवेशस्तरीय न्यायिकसेवापरीक्षासु भागं ग्रहीतुं विधिस्नातकानां कृते पूर्वतनस्य अनिवार्य त्रिवर्षीय विधि अभ्यासस्य आवश्यकताम् एकवर्षं यावत् न्यूनीकृतमस्ति. झारखंड उच्च न्यायालयेन JSSCCGL अथ CDPO परीक्षाभ्यः नियुक्ति निरसनस्य राज्य सर्वकारस्य आदेशस्य विषये अंतरिम स्थगनम् अस्थापितमस्ति. याचिकाः न्यायालयस्य पुरतः तर्कं कृतवन्तः यत् विज्ञापनानि नियुक्तयश्च आकस्मिकरूपेण निरसनात्मक सर्वकारस्य निर्णयः विहित नियमानाम् अनुरूपः नासीदिति. औषध विभाग सचिव मनोज जोशी अद्य चिकित्सा उपकरण उद्यम आग्रहत यत् भारतस्य विनियामक संरचनायाः निर्माणे बृहत्तरं निवेशं प्रदातव्यमिति. नवदेहल्यां CII ग्लोबल मेडटेक इत्याख्यं शिखरसम्मेलनं संबोधयन् श्रीजोशीवर्यः अवदत् यत् विनियामक चर्चासु उद्योगस्य सहभागिता सम्प्रति परिमिता अस्तीति. वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सिंगापुर देशेन सह समग्र एशिया खंडेन सह आर्थिक सहयोग प्रगाढ़ीकर्तुं व्यवसाय स्तरे परस्पर सहयोग दृढ़ीकर्तुं च भारत देशस्य प्रतिबद्धतायाः विषये बलं दत्तवान्. तेन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोदयस्य नेतृत्वे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इति व्यवस्थायाः सुदृढ़ीकरणाय सर्वकारस्य प्रयत्नाः च प्रकाशिताः. भारत ऋतुविज्ञान विभागः अद्य पूर्व मध्यप्रदेशे अत्यधिक वर्षायै नारंगवर्णीयां संचेतनां प्रख्यापितवान्. अन्ते क्रीडावार्तासु, भारतस्य काचल ढोचक नाम्नि द्वन्द्वयुद्ध क्रीडिका क्रमशः द्वितीयवारं अन्तः 20-वर्षीयाणां महिलानां विश्व द्वन्द्वयुद्ध स्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती. सा निर्णायकद्वन्द्वे चीनदेशीयां जिंगरू सन् नाम्नि क्रीडिकां 7-0 पराजितवती इति वार्ताः.
4: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी आणि AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी. संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत. प्रसारित करत आहोत स्वस्थ भारत. आजचा विषय आहे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी झोपेचं महत्व. याविषयी मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ अमित टाक यांची स्मिता नामदे यांनी घेतलेली मुलाखत.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता

0: पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
0: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
1: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
3: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितम्बर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
4: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर

0: चीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआर ॲपसहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. यानंतर ठीक 11 आपण ऐकू शकाल हिंदी समाचार. हे हिंदीतून दिलं जाणारं बातमीपत्र आणि 11:05 इंग्रजी समाचार. हे इंग्रजीतून दिलं जाणारं बातमीपत्र. ही दोन्ही बातमीपत्रं आम्ही आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करीत आहोत. सुरुवातीला ठीक 11 हिंदी समाचार दिल्ली केंद्रावरून.
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है. नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें. श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की. उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है.

0: बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license Raj of earlier governments was used to increase unemployment, while his government's production-linked incentive model creating opportunities. Talking about the seven powers representing seven key streams, which he spoke about from the Red Fort, the Prime Minister highlighted that seven such sectors include manufacturing power, agriculture and food processing, technology and innovation, and the green and blue economies on which India is placing immense focus. He said India is currently undertaking next generation reforms at the policy level to secure future, and the government is implementing reforms in governance and ease of living. He said reform is not a compulsion, as it is government's commitment and conviction. The Prime Minister highlighted that the rapid development and swift reforms taking place in India today because there is political stability and continuity in the government's policies. Union Home Minister Amit Shah has reiterated that the zero tolerance policy against illegal immigrants will continue and the detect, delete and deport process will be strictly followed. He said the government's commitment to deport every illegal immigrant from the country is utmost priority, adding that demographic change will be strictly stopped. The Home Minister was addressing a gathering in Siliguri, West Bengal today after inaugurating a six-day awareness exhibition on the Bharatiya Nyaya Sanhita at Kawakhali ground. Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav today launched the Mobile Phone Manufacturing Scheme, MPMS. The Union Cabinet had approved the scheme last month with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The Ministry of Electronics and IT has also notified the scheme. The scheme aims to increase global competitiveness by further enhancing the scale, deepening the mobile manufacturing supply chain and stronger domestic manufacturing capabilities. Addressing media in New Delhi, Mr. Vaishnav said the MPMS has two target segments, including incentivizing mobile phone manufacturing and supporting Indian mobile phone brands. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda today reviewed the prevailing situation and preparedness for H1N1 influenza in the country, with particular focus on the national capital. The ministry informed that Mr. Nadda emphasized the need for continued vigilance, robust surveillance and proactive preparedness, with close monitoring of influenza trends. He also emphasized public awareness and preventive health practices, including respiratory hygiene and hand hygiene, and advised individuals with persistent or severe respiratory symptoms, breathing difficulty or other warning signs to seek medical advice promptly. Vice President C.P. Radhakrishnan has highlighted the importance of preserving India's cultural roots, noting that culture is a strong bond that unites the country. Addressing the Antar Hriday Connect Malha 2026 event in New Delhi, the Vice President called upon the youth, particularly the Gen Z, to contribute towards reforming and strengthening the system with patience and responsibility. In women's hockey, the Indian women's team is taking on the Netherlands in their opening match of the second pool phase of the AFIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands, today. The match is underway. Under the new format, the top two teams from Pool E will qualify for the semi-finals. India trail Netherlands 0-1 at half-time. And that is the end of this news bulletin.
4: Akashvani Mumbai Kendra Asmita Vahini. रात्रीचे 11:10 होत आहेत. अस्मिता वाहिनीची दुसरी सभा आता समाप्त होत आहे. पुन्हा आपली भेट अस्मिता वाहिनीच्या पहिल्या सभेत प्रातःकालीन 5:50 या दरम्यान AIR मराठी DTH उपग्रहवाहिनी तसंच न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर आमचे सर्व कार्यक्रम आपण ऐकू शकता. शुभरात्री. नमस्कार. जय हिंद.

0: आतंकवादाच्या विरोधातली ही लढाई आहे कशी हे जाणून घेऊया कर्नल त्रिपाठी यांच्याकडून. त्यांना अशा लढाईचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. नमस्कार कर्नल साहब.
1: मेरा नाम कर्नल रविंद्र त्रिपाठी है. मैं इंडियन आर्मी में करीब 22 साल सर्विस के बाद मैं वहां से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके अभी पेप्सी को इंटरनेशनल उसमें काम करता हूं.
0: आप ऑपरेशन रक्षक के बारे में हमें कुछ बताएंगे?
1: आतंकवाद के तरह तरह से मतलब उसके रूप होते हैं. कहीं पे पब्लिक के बीच में डर फैलाने के लिए तरह तरह के लोग कार्रवाई करते हैं, और कहीं पे जो टेस्ट जो सामने से होता है उसमें वहाँ मतलब बाहर के देशों के ट्रेंड मतलब सोल्जर्स वो हमारे देश के अंदर आके हमारे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो उससे डील करने के लिए तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस या इंडियन पुलिस जो है वो डायरेक्टली उससे डील करते हैं. फौज का जो डायरेक्ट सामना होता है इनसे वो जैसे जम्मू और कश्मीर में है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर नॉर्थ वेस्ट एरिया में है, आसाम मेघालय त्रिपुरा मणिपुर इन सब क्षेत्रों में, या फिर जैसे नक्सलवादियों का कार्यक्रम है, नक्सलवादियों का वो डायरेक्टली उससे उनसे उसका कांटेक्ट नहीं होता है, क्यों सिविल प्रॉब्लम है सिविल पुलिस उसको डील करती है. आर्मी का जो डायरेक्ट या डिफेंस फोर्सेज का जो डायरेक्ट इनसे जो सामना करना पड़ता है वो मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में जो बॉर्डर के एरियाज हैं कश्मीर में है, पंजाब साइड में है, राजस्थान साइड में है, गुजरात के साइड में है, वहाँ पे भी कुछ मात्रा में इनकी कार्रवाई चलती रहती है. कश्मीर में सबसे ज़्यादा है, और बाकी पंजाब बॉर्डर पे या राजस्थान बॉर्डर पे या गुजरात बॉर्डर पे वहाँ पे भी कुछ न कुछ छिपे तौर से ये अपनी कार्रवाई करते रहते हैं, जिसका कि सामना इंडियन डिफेंस फोर्सेज को करना पड़ता है. ऑपरेशन जो है बेसिकली वो पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिटेंट एक्टिविटीज होती हैं उससे डील करने के लिए हुआ था जहाँ तक मुझको मालूम है. तो बेसिकली वो चीज़ें डील की थी इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री या फाइटिंग फोर्सेज ने. मेरा उस समय संबंध इंडियन आर्मी के या जब मैं सर्विस में था तो कोरा PME इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स जो कि टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, और आप रक्षक में उसी के बारे में मतलब उससे मतलब डील करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से कार्रवाई की गई थी.
0: कॉर्डन ऑफ सर्च ऑपरेशन ये सब क्या कॉन्सेप्ट है?
1: अब जैसे अक्सर न्यूज में आता है या न्यूज़पेपर्स में आता है कि सर्च एंड कॉर्डन ऑफ ऑपरेशन किया गया, तो वास्तव में क्या होता है जब इंटेलिजेंस के द्वारा या किसी भी सूत्र से या कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि फलाने गांव में या फलानी जगह पे या फलाने के घर में कोई बाहर के आतंकवादी आके रुके हुए हैं और वो कोई एक्शन करने की नहीं कर रहे हैं, तो उस समय ये इंफॉर्मेशन मिलने पे उस एरिया को कम्प्लीटली कॉर्डन ऑफ किया जाता है. कॉर्डन ऑफ मतलब उसको चारों तरफ से घेरा जाता है. वहाँ से बाहर निकलने के जो रास्ते होते हैं जैसे कोई सड़क है या कोई गली है या कोई वो है उसको सबको ब्लॉक कर दिया जाता है. ब्लॉक करने का मतलब वहाँ पे सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए जाते हैं जिससे कि वहाँ से कोई निकल ना सके. फिर उसके बाद कम्प्लीट एरिया कॉर्डन करने के बाद घेर देने के बाद फिर उसका सैनिटाइजेशन करते हैं. सैनिटाइजेशन का मतलब उसमें फिर एक एक घर है अगर घर या एरिया है तो एक एक चारों तरफ से उसका सर्च किया जाए, खोज की जाती है. तो अगर वहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं तो वो तो पता लग जाता है कि वो लोग हैं, वो लोग इनोसेंट हैं, वो उसके लिए कोई मतलब हमारे लिए उल्टा हमारे लिए खराब काम नहीं कर रहे हैं. लेकिन उन्हीं के बीच में जो लोग छिपे होते हैं उनको डरा धमका के फिर एक एक घर या एक एक एरिया जब सर्च किया जाता है, अगर इस तरह के लोग मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. और कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस में हर एक बार ऐसा देखा गया है कि कॉर्डन करने के बाद जब ये आतंकवादी दहशतगर्द जब उनको पता लग जाता है कि वो

0: गए हैं तो फिर वो फायरिंग शुरू करते हैं, वो निकलने के लिए, भागने के लिए, बचने के लिए, फिर वो ये स्थिति क्रिएट करते हैं जिसमें कि फायरिंग शुरू हो जाती है। उस तरह के माहौल में फिर वो देखा जाता है कि कहाँ से फायरिंग आ रही है, किस तरफ से आ रही है, किस तरह का फायर है, स्मॉल आर्म्स का फायर है या मशीन गन का फायर है या फिर हैंड ग्रेनेड या इस तरह से एक्सप्लोजिव वो यूज कर रहे हैं, तो वो सब देख के फिर उसके बाद उसी तरह से फिर इंडियन आर्मी की तरफ से भी कार्रवाई की जाती है और कोशिश ये रहती है कि उनको जीवित पकड़ लिया जाए। लेकिन यदि स्थिति बहुत खराब होती है, जैसा कि कई बार अखबारों में लोगों ने पढ़ा है कि फायरिंग हुई जिसने कि वो ब्लास्ट ऑफ करना पड़ा, घर को जो है पूरा गिराना पड़ा और फिर उसमें आतंकवादी जो है वो चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पहला प्रयत्न ये होता है कि उनको जीवित पकड़ा जाए बगैर किसी नुकसान के। अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर इससे निपटने के लिए फिर बाकी जो कार्रवाई होती जरूरी हो की जाती है।
1: हम लोग एज अ सिविलियन इस काम में सेना की मदद कैसे कर सकते हैं?
0: आतंकवाद जो है उसका कोई खुला हुआ चेहरा नहीं होता है। कोई भी आतंकवादी जो है वो आम नागरिक की तरह से दिखता है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो आतंकवादी है या नहीं है, सामने से नहीं पता लगता है। तो एज ए सिविलियन, एज ए सिविल सोसाइटी, हमें सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके बारे में हरदम जागरूक रहें। क्या कर सकते हैं हम इस तरह की चीजों से बचने के लिए या इसके बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए? जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, अगर हम वहाँ पे पिछले 15-20 साल से रह रहे हैं तो बाई एंड लार्ज तकरीबन वहाँ पे कौन रहता है, कौन आता है, कौन जाता है, वो तकरीबन सभी को पता होता है। अगर मान लीजिए उस बीच में कोई इस तरह से नए चेहरे दिखते हैं जो कि पहले कभी नहीं वहाँ दिखाई देते थे, उनकी भाषा जो है वो डिफरेंट है, उनका बोलने का तरीका डिफरेंट है, उनके स्पीकिंग एक्सेंट जो है वो उस एरिया का नहीं है। अब जैसे महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में जो हिंदी बोलते हैं वो हमको पता है किस तरह का एक्सेंट होता है, मराठी बोलते हैं एक्सेंट क्या होता है पता है। अगर बाहर का कोई होगा, मान लीजिए वो पख्तूनी मतलब बाहर के कई जगह से आया हुआ है, तो उसका एक्सेंट दूसरा होगा, तो उससे पता लग जाता है कि आदमी यहाँ का नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ का नहीं है तो फिर वो क्यों आया हुआ है, किसके पास आया हुआ है, कहाँ ठहरा हुआ है, क्या काम करता है, क्या करने जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दे। साधारण आम नागरिक भी अगर ध्यान देगा तो उसको पता लग जाता है। और ऐसी स्थिति में सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि वो आम आदमी जो है, आम नागरिक जो है, वो इसके बारे में उस एरिया के जो पुलिस अथॉरिटीज है उनको इन्फॉर्म करे कि इस तरह से कुछ हमको लगता है। उसके बाद की आगे की कार्रवाई पुलिस की होती है। एक तो ये हुआ। दूसरा जो है, अगर कोई ऐसे टेक्निकल एक्टिविटीज दिखाई देती हैं, जैसे कहीं पे कुछ नहीं होता था वहां पे एकदम से काफी टेक्निकल एक्टिविटी बढ़ गई, तो उससे पता लगता है कि कुछ शायद अलग तरीके का काम प्रारंभ हो गया है, तो उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। और सबसे ज्यादा जानकारी किसी भी चीज के बारे में उस एरिया के रहने वाले लोगों को तुरंत मिल जाती है। कमी ये है कि वो उसको आगे बढ़ के उसको आगे बताते नहीं। हमारा ये सोचना रहता है कि हमको क्या लेना देना, हम इसमें डायरेक्टली क्यों इन्वॉल्व हों, हम अपने घर में शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं तो क्या तकलीफ है हमको। तो ये जो मानसिकता होती है वो थोड़ा अगर नहीं रहेगी, सभी लोग जागरूक होंगे तो वो देश के लिए भी, समाज के लिए भी, उस क्षेत्र के लिए भी, सभी के लिए वो फायदेमंद होगा।
2: धन्यवाद कर्नल साहब, थैंक यू सो मच।

सूट वाले बूट वाले कोट वाले हाइट वाले या या या अरे धोतर वाले सदरे वाले कुर्ते वाले फेटे वाले या या या कुनी गोविंद घा कुनी

0: अरे कसला थरथराट हो डॉन आणि उडी उडाणा डॉन।
1: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है।

अमाश जले को आग कहते हैं, बुझे को राग कहते हैं, जिस राग से बारूद बनती है उसी को लक्ष्मीकांत कहते हैं।

टकले की खोपड़ी टूटने की आवाज सुनी तुम लोगों ने? अरे अभी तो लक्ष्य का एक हाथ गया रे, लक्ष्य का दोनों हाथ दोनों पैर भी गया ना, लक्ष्य किसी के सामने झुकेगा नहीं, क्या समझे? नहीं समझे।

0: बंद कर तू जरा गाणं, जरा दाखव की हंगामा।
1: हंगामा जय हंगामा, कहा गई मेरी गंगम्मा, टकले से घाबर गई क्या, आ दिखाता हूं तुझे हंगामा।

0: थरथरात।
1: तुमची एवढी आराधना केली तरी तुमचा हाच अवतार।
2: रो मत गंगू, ये तो दुनिया की रीत है। अरे ये दुनिया वाले न तो खुद चैन से जीते हैं, न दूसरों को चैन से जीने देते हैं। आई हेट टीयर्स गंगू, इन आंसुओं को पोछ दो, ये बहुत कीमती है रे।